0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट Timir Ghosh. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज Amyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

गणेशम गणेशम च।

Tatim,

Dum dum.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं कोयल दास गुप्ता. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इमोन सरकार. तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में ख्याल गायन, कलाकार कोयल दास गुप्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Koel Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to a khayal in the rag Bairagi. Our artist Koel Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी कोयल दास गुप्ता। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इमोन सरकार। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में धमार। आज ही कलाकार हैं शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज प्रसंगत कर रहे हैं अपूर्व लाल मन्ना। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में धमार, कलाकार शिवली चक्रवर्ती।
1: You were listening to a khayal in the raag Bairagi. Our artist was Koel Dasgupta. Accompanying our artist on the tabla was Imon Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present Adhamar. Listen to Adhamar in the raag Bilash Khani Tori. Our artist is Shivli Chakraborty. Accompanying her on the Pakhavaj is Apurbalal Manna. Listen now to Dhamar in the Raag Bilash Khani Tori. Our artist, Shivli Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी में धमार सुन रहे थे। कलाकार थी शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे अपूर्व लाल मन्ना। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a dhamar in the rag Bilashkhani Tori. Our artist was Shivli Chakraborty. Accompanying her on the pakhavaj was Apurbalal Manna. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन. कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी. सर्वप्रथम आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारवा. विलंबित और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित रूपक कुलकर्णी प्रेजेंटिंग राग मारवा विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू एक ताल.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। पंडित रूपक कुलकर्णी से बांसुरी पर आप सुन रहे थे राग मारवा। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित रूपक कुलकर्णी प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला। मध्य लयगत मत ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, Anytime Indian Music. You're listening to Rag Marwa on flute by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhut Fadke. Continuing the concert, now listen to Rag Yaman, in which you will listen to Alap Jod Jhala. Madhya Laigat said to Mattal and Drutgat set to Teen Tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhoot Phadke. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music.

0: रागम चैनल है। प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुहारी। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। वी नाउ सेंड फॉर यू सरोद रिसाइटल बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला इज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। लिसन टू राग बसंत मुखारी इन विच यू विल हियर द आलाप followed by the vilambit and rutgat set to tintal।

0: आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकंपनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: यंतने वर्णिंतुने सखी जावली रागम केदारम आदितालम त्रिस्रगति।
1: Listen to a javali in राग केदारम। यंतने वर्णिंतुने सखी, set to आदिताल त्रिस्रगति।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विभव नागेशकर का तबला वादन, प्रस्तुत है ताल तीन ताल. This is Ragam DTH Channel, Anytime Indian Music. In the program of Hindustani Classical Music, we present Tabla recital by Vibhav Nageshkar. He presents Taal Teen Taal.

धा त्रक धे टक टक टक दी गन त्रक धे के टक टक गदी धर्क धे के

ये था तीन ताल। आप सुन रहे हैं विभव नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगत कर रहे हैं विनोद पड़गे। विभव नागेशकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल झपताल। दैट वॉज ताल तीन ताल। यू आर लिसनिंग टू तबला साइटल बाय विभव नागेशकर। ही इज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय विनोद पड़गे। विभव नागेशकर नाउ प्रेजेंट्स ताल झपताल।

ये था ताल झताल। विभव नागेशकर अपने तबला वादन का समापन ताल धमार से कर रहे हैं। दैट वॉज ताल झपताल। विभव नागेशकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विथ ताल धमार।

ये था ताल धमार। आप सुन रहे थे विभव नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल धमार। यू वर लिसनिंग टू तबला रिसिटल बाय विभव नागेशकर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा by Vinod Padge. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बिहाग में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं पुष्पेन डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तुषार दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिहाग में सरोद वादन, कलाकार पुष्पेन डे।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। This evening, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sarod recital in Rag Bihag. Our artist this evening is Pushpen De. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta. Listen now to a sarod recital in the Rag Bihag. Our artist, Pushpen De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विहाग में सरोदवादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पुष्पेंदे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तुषार दत्ता। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in Rag Bihag. Our artist this evening was Pushpen De. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Datta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

गणपति एकदन लंबोदर कर शोलत्र पुण्रभाल लोचन विशाल धृत रुचिर माल वारे सुर पूजित कीडति अखंड तट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रज धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृत कृत गृंगधा गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृत कृत गृंगधा गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृत कृत गृंगधा।

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीश त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विदंत सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंता धारिंता दादा दिंता जय जय मन मधारी धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपा धर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज केन्द्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नमः नमः जय जय हर हर हर।

गिंतरांधा

0: है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागे न धागे न तिरकट कटा तिरकट कटा धेत धेत धे धे धे कृधेत धेता धल धल धल धल धिलांग घटान कृधा ट धम कृत कटा धिरकट धे धे धाके टे किटे धागे ते टे कति टे धा कृत तिरकट कटा तिरकट कटा धा झम के झू मत सुंड फेरत क्या मूर्ति गजाननम तिरकट धेत धे धे धेत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूस वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धा कृत धुम कृत धक कृत धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी मृधा कृत कृत धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी मृधा कृत कृत धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी मृधा धुम कृत गिरी धा गिन धा।

कल्याण प्रभु।

बम बम शिव शिव अगर बम डिमि डमरु डमक डिमि डिमि डिमि बाजत डिमि डिमि डिमि डिमि टिके डिमि डिमि दम करत दम करत दम करत करत गा दम करत करिंग बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धरति धर रे धर धर धर धवल धार गंगा छब धरति धर करत करत करत धर करत ता धर करत धर करत ता धर करत धर करत ता धा जटा घटा महचंद्र छटा गिरिंग धकट धा धा गिरिंग त्रिपुंड राजे मुंडमा वक्षस्थल साजे करत शूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिन ता धा ग्रधान धगत टिकट धकट धगत धान धान धगत टिकट धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगत टिकट धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगत टिकट धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला।

धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग ध

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीजीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

Yeah.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित बलदेव राजवर्मा का गाया राग बैरागी।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal rendition in rag Bairagi by Pandit Baldev Rajvarma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन राग बैरागी बाय पंडित बलदेव राज वर्मा। नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत। श्रोताओं, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य। आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं। कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य। तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन।
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स। वी बिगिन द प्रोग्राम विद मीरा भजन फॉलोड बाय अ कबीर भजन। आवर आर्टिस्ट इज नंदिनी भट्टाचार्य। Listen now to Meera and Kabir Bhajans. Our artist, Nandini Bhattacharya.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nabonita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chandok.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।